0: Remember that the Mamata Banerjee camp has been saying that no such letter is there, no signature has been placed up. All these things are fake, all MPs are together. But now this letter somewhere exposes the kind of claims which were being made by Mamata camp. Now it remains to be seen how claims versus counterclaims further proceed. But one thing is clear, that letter is out in open, and this letter is most likely to be submitted to Lok Sabha Speaker. And when this letter is submitted to Lok Sabha Speaker, the faction, Sakoli Dastidar faction, is going to request Lok Sabha Speaker to allot them the cap of real EMP. We'll have to see how Mamata Banerjee further is going to quell the kind of rebel which is now going day by day.
1: True. And you know, Piyush, you made a very crucial point here, you know. The fact that several of these names that have come up in this letter were still being speculated upon, a lot of chatter about, yes, this person has, this certain MP has signed or not. With this letter, it gets confirmed. And some of those names, like Shayani Ghosh, Yusuf Pathan, you yourself mentioned, they were very close to Mamata Banerjee up until the election. In fact, even after election results were declared. And now, within just a month's time, we see the kind of change that's taken place, wherein they've not only abandoned Mamata Banerjee to an extent, but they have claimed that they are the real Trinamool Congress and not the party that was founded and started by Mamata Banerjee herself.
0: That's interesting. You can also see the numbers that are mentioned there. It indicates that this MP has signed so far this letter. They only need one more MP to sign this letter. So it is now clear out in open. It is now evident that one faction of TMC, which has the 19, which has as of now 18 MPs supported, is now a breaker of faction. They just need support of one more MP, which is certainly then indicating that they have crossed the mark of two-third majority. So after the signature of one more MP, we will see a lot of development taking place. And like you mentioned, that yes, there we have names of leaders like Yusuf Pathan, Shravan Ghosh, and they were the ones who were always standing with Mamata Banerjee. Shravan Ghosh was like an image of Mamata Banerjee, a younger image of Mamata Banerjee, and he has also been championing aggressively against BJP in the last few elections. In fact, he was also a chosen candidate from Jadavpur, from where Mamata Banerjee has been contesting, and he has been winning for the last many elections. But when now this time, the rebel camp had to get united. Shravan Ghosh, Yusuf Pathan, and various others have come together. Mass exodus of Trinamool Congress camp can now clearly be seen not only in Lok Sabha, but also in Rajya Sabha, where around 3 MPs in Rajya Sabha have resigned, and more are likely to resign in coming few days. But one thing is clear, that big split of Trinamool Congress is now out in open. We'll have to see how some faces of Trinamool Congress, especially the likes of Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, are going to react on this. Why? Because in the last few days, we have been claiming that no such letter has been signed. All MPs are united. Mamata camp has been saying that it is nothing but a BJP conspiracy. But the rebel MPs have come out in open, and they have got support of, as of now, 18 MPs. It's just one more MP to sign the letter, and most likely after that signature, the letter will be submitted to Lok Sabha Speaker.
1: Piyush, just stay with me. We also have Himanshu Mishra back with us. Himanshu, ये जो नंबर है 20 एमपी जो लोअर हाउस के हैं, उन्होंने ये स्पीकर को ये जो लेटर भेजा है, उसके मुताबिक अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, जो फाइनली डिसाइड करेंगे कि रियल तृणमूल कांग्रेस कौन है, क्या नंबर्स इनको जरूरत पड़ेगी फ्लोर में ये प्रूव करने के लिए कि वो रियल टीएमसी है, और क्लेम जो पार्टी सिंबल है उस पर क्लेम डालने के लिए, ये जो टेक्निकलिटी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज।
2: देखिए, बिल्कुल टेक्निकल आधार पर देखिए तो 20 सांसदों के साइन जो है स्पीकर को 18 मई की तारीख से जो है वो साइन करके दिए गए हैं, क्योंकि 18 मई के बाद वो 19 मई को जो है वो कल्याण बैनर्जी को अभिषेक बैनर्जी ने जो है चीफ विप बनाया, और उसके बाद 20 तारीख को वो पत्र जो है स्पीकर को भेजा गया। तो 18 तारीख की डेट से जो है ये 20 सांसदों के स्ट्रक्चर वाला जो पत्र है वो स्पीकर के पास गया है। स्पीकर को ये तय करना है टेक्निकल आधार पर कि इस ग्रुप को मान्यता देनी है या नहीं देनी, क्योंकि कल्याण बैनर्जी 20 मई को जो है वो चीफ विप बन गए, तो उससे पहले की डेट का ये लेटर जो है वो स्पीकर के पास गया है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं उसके लिए अगर टीएमसी के सिंबल पर टीएमसी के भावी गुट उस पर दावा करता है, पार्टी से दावा करता है, तो पहली लड़ाई जो है चुनाव आयोग से होगी। जो चुनाव आयोग में जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा और जिसके खिलाफ आएगा, खिलाफ जिनके पक्ष में फैसला जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, हमने पहले भी देखा है महाराष्ट्र में जब शिवसेना के दो खड़े हुए थे तो सिंबल की लड़ाई और पार्टी की लड़ाई जो है वो आगे तक चली गई थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा है चाहे एलजेपी की अंदर जो है अलग गुट की मांग हुई हो, तो दिल्ली हाईकोर्ट तक ये जो है मामला गया था जब चिराग पासवान को अलग करके उनके चाचा ने चार एमपी का गुट बना लिया था, एनसीपी में ये लड़ाई हुई है। तो तमाम इस तरीके की लड़ाइयां जो है वो सिंबल की लड़ाई हम देख चुके हैं पहले भी, और जिस ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद और बागी विधायकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पार्टी पे एकाधिकार किसका है, वहां की स्टेट यूनिट पे किसका है, और अभी तक दोनों ही गुटों ने बागी विधानमंडल का हो या लोकसभा का, दोनों ही गुटों ने अभी तक पार्टी के सिंबल और पार्टी पे कब्जे की बात नहीं कही है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार पार्टी नहीं चल रही हुई है, उसमें कई तरीके की गड़बड़ियां हैं, कई तरीके के ऐसे डिसीजन है जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर दिए गए। वो एक आधार जो है वो बनाया जाएगा इन बागी गुट के नेताओं का पार्टी सिंबल और पार्टी पे एकाधिकार के लिए।
1: हिमांशु, सबसे पहले जब काकुली घोष दस्तीदार ने अपनी रेजिग्नेशन की बात की थी और जब वो उनका नाम सबसे पहले आया था एज अ रेबेल एमपी, उस टाइम पे ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि जितने भी एमपीज यहाँ से उनके पीछे सपोर्ट में निकलेंगे उनके साथ, वो एनडीए को अपना सपोर्ट देंगे। अब अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इन 20 एमपीज की बात करें, फिलहाल वो कह रहे हैं कि वो असली टीएमसी है और ममता बनर्जी को वो लोग आइसोलेट कर रहे हैं, पर इसमें अभी ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा क्या संभावना है कि यहाँ से ये जो 20 एमपीज हैं उनमें से कुछ बीजेपी ज्वाइन करे या फिर एनडीए को सपोर्ट करे इंडिपेंडेंटली?
2: लोकसभा में ऐसी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अंदर आपको दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा और ये 20 एमपीज का ग्रुप जो है वो अलग मांग कर रहा है, वो बाद में एनडीए को सपोर्ट करेगा। ये बात काकुली घोष ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दी है। लेकिन राज्यसभा के अंदर लगातार जिस तरीके से 3 इस्तीफे हुए हैं, कल भी आपने देखा प्रकाश सिंह बारिक का इस्तीफा हुआ, उससे पहले जो है सुष्मिता देव का हुआ, सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा हुआ, वो जो राज्यसभा के एमपी रिजाइन कर रहे हैं वो जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जब वहां बाई इलेक्शन होंगे पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के लिए इन 3 सीटों पे, तो वो तीनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। ये एक अलग तरीके की राज्यसभा में स्ट्रेटेजी है, लोकसभा में अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है और पश्चिम बंगाल में अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है। अगर पश्चिम बंगाल में जो 7 विधायकों का गुट है वो ये कह रहा है कि हम ममता बनर्जी को एडवाइजर बनाते हैं, ममता बनर्जी हमारी नेता है, लेकिन वो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ टीएमसी का अलग गुट जो है वो एनडीए की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में जो सरकार चल रही है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से अलग अलग तरीके की चीजें हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो टैकल की जा रही है, और यही कारण है कि ये बागी सांसदों का जो पत्र है वो 18 मई की तारीख से जो है स्पीकर को दिया गया।
1: जी जी हिमांशु, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दिस इज वेयर इट ऑल स्टैंड्स। इट्स जस्ट बीन अबाउट अ मंथ आफ्टर, अ लिटिल मोर देन अ मंथ आफ्टर द रिजल्ट्स केम आउट, अ मैसिव रेजिम चेंज दैट वी सॉ, अ हिस्टोरिक रेजिम चेंज दैट वी सॉ, व्हिच हैपेंड इन द स्टेट ऑफ बंगाल, ब्रिंगिंग टू पावर बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट व्हाट्स हैपेंड इन द टीएमसी पोस्ट that very victory which was secured by the BJP in Bengal has now become the major point of conversation, speculation, and has stolen the spotlight completely. Indrajit Kundu now joining me on the broadcast with more details on the same. Indrajit, a very good morning to you. This is the letter that we've now finally accessed which confirms all of those 20 MPs who were signatories to that letter killing all speculations about who signed it and who did not. Out of them, and I'll ask you this, out of them, there are names of people who've been very, very close to Mamata Banerjee. Now, there is one faction of TMC leaders who we see are saying that they're very, very done and frustrated with Abhishek Banerjee, and they're still sticking with Mamata Banerjee, but they want Mamata Banerjee to choose between them and Abhishek. But this particular group of 20 MPs, they completely want to claim the ownership of the very party's name and symbol. That is the Trinamool Congress, which was started and founded by Mamata Banerjee herself. Two very different notes that we are hearing from these TMC leaders now.
2: Well, you know, at this point in time, this is very, very interesting because over the last 1 week, there have been so much speculation about who will be part of the rebel camp as far as the parliament is concerned. No such confusion as far as the Vidhan Sabha, because we've already seen and done and dusted, and the speaker has accepted Ritabrata Banerjee's nomination as speaker, as the leader of the opposition, and he you know, both camps were giving out their own numbers. There were claims and counterclaims. This is for the first time that the rebel camp numbers are out along with complete evidence of the signatures. So there are these signatures that have now been put out to lay to rest the speculation. As you know, Shayani Ghosh is somebody who is very, very surprising. So is Mala Roy. They had completely gone incommunicado after the election results. The fact is that they have been able to, you know, the rebel camp have been able to convince them. Roshana Banerjee, she has not been visible. There are some, MPs who were visible. They were attending the meetings that were taking place in New Delhi, led by the BJP leadership, Bhupendra Yadav, the Chief Minister, Shubhendu Adhikari himself, there was Biplab Deb as well. So all those people, you know, were leading these meetings. And some of these MPs were visible. So we have a list of about 14 people who had met the BJP leadership in New Delhi, and they had a huddle amongst themselves as well, the rebel MPs, earlier this week. There were some names that were doing the rounds, like Mala Roy, Mitali Bagh, Yusuf Pathan, and Shayani Ghosh, Roshana Banerjee, who were not seen there. You know, we didn't have visual evidence of them there. And finally, Shayani Ghosh yesterday came back to Calcutta. We saw her. She was wearing a mask and she didn't want to interact with the media. So that gave us a sense that she was there. Deepak Adhikari of Dave, superstar, he was also there in the meeting, we can confirm to you, with the Chief Minister in New Delhi. However, it wasn't visible in New Delhi. When he came back to Calcutta the very next day, he had ended a meeting with the Chief Minister. But yet he was giving mixed signals because he said that he was still with DB and he was working with he wanted to be close and close proximity with Mamata Banerjee. But this is you know, concrete evidence, the signatures that have been obtained by the rebel camp. So you see there they have the numbers and they have a majority of them. So 19 signatures already, and this, of course, would mean that they have a majority because the Trinamool Congress in Lok Sabha has 28 MPs at this point in time, and they have two-thirds the numbers where they can. What Kaupani Ghosh Dasidhar has been telling us is that, you know, they seek to form a separate bloc, and they want to support the NDA. So at this point in time, as it's been changed, the letter to the speaker, so they will seek to remain as a separate bloc and give their support to the NDA. There are a lot of technicalities which are being discussed over the past few days as to whether or not how the entire anti-defection law, whether or not that comes into effect. Can they circumvent that for which they need the numbers, or whether they would join the BJP, if that is possible at all. So all these technicalities, legal details, will be discussed right there in the days to come. First and foremost is the number. And given that the signatures are out, it clearly shows that the rebel camp has the numbers, the majority of them. And remaining few that are still in touch with Mamata Banerjee, that now is confirmed. So it's Abhishek Banerjee, it is, you know, Dora Sen, it is Pratima Mandal, Shatrughna Sinha. Mm. Mm. These are the people who are with Mamata Banerjee camp, which means that there will be around 8 of them.
1: You know, Indrajit, I know it's pretty early to ask this question, and there's no certain answer because there is, of course, a lot of technicalities, as you've pointed out. But would you say with this letter coming out in public, this might be the end to Mamata Banerjee's Trinamool Congress at this point? Do you think the rebel MPs do have a chance at not just securing the number, but also eventually passing a floor test and the legalities involved in this entire process?
2: It's too early, as you yourself mentioned. You know, these are fast-paced political developments that are taking place. Whether the rebel camp or does the rebel camp actually want to state claim on the party symbol, we don't know. That is a realm of possibility that cannot be ruled out. But that's also a long legal procedure before the Election Commission of India. So that is in the realm of possibility. One cannot rule that out. But is that what they seek right away? Is something that we'll have to see. We haven't got such signals so far from the rebel camp. What they do seek, of course, is that they would...
1: Indrajit, I'll have to interrupt you. I'll have to interrupt you for a second here. We have Arup Chakraborty, one of the rebel TMC MPs, with us on India Today at this given point. Mr. Chakraborty, thank you so much for speaking to us on India Today. We do see in this very letter that we have access now, we do see your signature on it as well. My first question to you would be your reason behind leaving the TMC, one would say, or rather staking claim on the fact that you, 20 MPs who formed the group, you are the real TMC and not Mamata Banerjee, who herself had founded this very party. Why is it that you're alienating from
3: Mamata
1: her?
3: Mamata Banerjee is the original leader of TMC. He formed this party. He is a very good fighter. But now he is very aged person. Now he has failed to compel to conduct a meeting with the all members, elected members. This was happened, nothing else.
1: But kya aap abhi bhi didi ke
3: new generation which was going to be held by the leadership of our honorable chief minister West Bengal, Mr. Subhendu Adhikari, ji sab mil ke kaam karo, ek saath karo, danga baji band karo, ghar baadi jalana band karo, madar band karo, sab mil ke ek saath kaam karo. सेंट्रल का काम सेंट्रल करो, स्टेट का काम स्टेट करो, सेंट्रल स्टेट को सपोर्ट करो, स्टेट सेंट्रल को सपोर्ट करो, जिसका मर्जी ऐसा करो, लेकिन शांति से करो।
1: पर मिस्टर चक्रवर्ती
3: ये एनवायरमेंट किया ना, ये जो बंगाल में या इंडिया में जो एनवायरमेंट तैयारी कर दिया, पीस पुलिस सब मिलके एक साथ इकट्ठा काम करेगा, डबल इंजिन का सरकार से हमको क्या फायदा मिलता है ये हमको देखना है।
1: पर एक महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग टीएमसी के जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी को इस तरीके से आइसोलेट कर रहे हैं? आपकी आप बोल रहे हो कि नए लीडर्स चाहिए, बट इस 20 एमपीज में बहुत सारे यंग लीडर्स का भी नाम है।
3: ममता बनर्जी के सामने सब पिक्चर नहीं आया, ममता बनर्जी का सब अंदर वाला खबर नहीं था।
1: आप कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था इसके बारे में?
3: नेता नेता है, अगर उनका पास खबर रहता तो इतना खराब रिजल्ट नहीं होता। उसको पास भी सब बात छुपा छुपा के रखा, आज दाल को बर्बाद किया कुछ कुछ आदमी पार्टी का। इसीलिए हम लोग नाराज हैं, चाहता है पब्लिक हमको माना है, पब्लिक हमको वोट डाला है, पब्लिक टीएमसी को सपोर्ट किया है। हम जितना नौजवान है, जितना हमारा 20 गो एमपी है, हम लोग मिलके नया तरीका से, नया ढंग से, नया रूप से टीएमसी को हम बनाने चाहता है।
1: पर क्या आप लोगों ने ममता बनर्जी को खुद बताने की कोशिश की थी कि टीएमसी की इस बार क्या क्या हालत है?
3: आप हमको बताए, हम क्यों ममता बनर्जी को बोलने जाएगा? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी. दिस इज हार्ड ड्यूटी टू कॉल अस. दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल द ऑल इलेक्टिव मेंबर्स एंड कंडक्ट विद देम, सिटिंग विद देम. And she will take decision. It is the final.
1: So you're
3: not calling.
1: But your 20 MPs who have decided to part ways from Mamata Banerjee, you are both isolating Abhishek and Mamata, because a lot of party leaders have also said they are at this given point frustrated with Abhishek and not Mamata Banerjee herself.
3: Madam, let me say. एक कट्ठा 20 आदमी अगर एक तरफ रहेगा, इसका भार ज्यादा होगा ना? एक तरफ 4 आदमी 8 आदमी रहेगा, इसका भार ज्यादा होगा?
1: नहीं, पर आप ममता बनर्जी से भी उतना ही गुस्सा है, आप वही कहना चाहते हो? सिर्फ अभिषेक बनर्जी से नहीं,
3: गुस्सा नहीं है ममता बनर्जी, अपने अपने से गुस्सा है. शी इज द लीडर. व्हाई शी इज नॉट कॉलिंग मीटिंग विथ हिज कॉलिग्स? Why she keep mum? It's unka sochna chahiye. It's hamara zimmebari nahi hai. Zimmebari unka hai. Ye unko sochna chahiye, unko decision lena chahiye, unko samjhana chahiye, unko baithna chahiye. Lekin out of public naraaz ho gaya, aap public ka man mein jo aa gaya, public ki leadership ko nahi manne chahta hai. देखिए, पब्लिक ऐसा चीज होता है ना, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जब अरेस्ट हुआ था तब एक तो बात आया था, आधा रोटी खाएगा इंदिरा को लाएगा, याद है? 1.5 साल के अंदर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गया था. ये पब्लिक साउट जो होता है ना, इसमें सब कुछ हो सकता. बंगाल में ऐसा हो गया, पब्लिक साउट हमारे इसमें चला गया. थैंक यू.
1: तो मिस्टर चक्रवर्ती, क्या आप एक तरीके से कहेंगे कि आप बिट्रेड फील करते हैं फिलहाल? क्या आप कहेंगे कि एक तरीके से आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को पता होना चाहिए था पर उन्हें नहीं पता था?
3: हाँ, क्यों हुआ ऐसा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु इज कंट्रोल द पार्टी? ऑल द पॉलिटी, ऑल द मेंबर पार्लियामेंट, नशी हार्सेल और समबॉडी. Those who are very close to ममता बनर्जी. देखिए ना क्या हो गया हालत. कलकत्ता जो ग्रुप है, वो ग्रुप पहले चलाता था 15 साल लेके पार्टी को. अब क्या हो गया? आज गंगा पार बंद है. आज गंगा इधर का आदमी सब चलाता है बंगाल. द गवर्नमेंट इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द rural leaders. Yes, change होते रहता है, change होते जाता है, धीरे धीरे होगा. और थोड़ा टाइम दीजिए और अच्छा होगा. थैंक यू.
1: जी जी मिस्टर चक्रवर्ती, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वेल, दैट वॉज अरूप चक्रवर्ती, वन ऑफ द 20 रिबेल TMC MPs who've signed that very letter which we have accessed. But on that very note, viewers, we'll keep a very close track of this story as we have been since day one. But right now, we're slipping into a short break. Do stay tuned as we come back with more news on the other side.

0: प्रतिमा जी, इसमें किस बात की कितनी सच्चाई है कि आप भी बागी गुट में शामिल हो गई हैं? एक खबर आई कि कल एक मीटिंग हुई भूपेंद्र यादव के घर में, जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, वहां आप भी मौजूद थी, इस तरह की खबरें आई थी।
1: देखिए, आप मेरा कलकत्ता का जो घर है, आप वहीं पे बैठे हैं और मैं आपके मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है, मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ। 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में। मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची, 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ। मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में, वहीं पे हूँ। और जो दल बनाया है हमारा कोलिग ने, साथी ने, मैं उसमें साइन भी नहीं किया और दिल्ली में गई भी नहीं।
0: तो आपको क्या बुलावा आया था, आपको फोन आया था उसमें शामिल होने के लिए?
1: हाँ, फोन तो आया था मेरे कोलिग से नहीं, दूसरे साइड से आया था,
0: बीजेपी।
1: मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने फोन किया है वो भी सम्मान मुझे दिया है, तो इसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ।
0: तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं?
1: देखिए, जो हमारा प्रतीक है घासेर उपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीती हूँ। जनता ने मुझे आशीष दिया है, इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूंगी। तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। जनता ने तो मुझे नहीं बोला आप जाओ छोड़ के दूसरे साइड में, तो मैंने जनता को सम्मान देके उनका अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ। तो घासेर उपरे जोड़ा फूल जो प्रतीक से मैं जीती हूँ वही सही हूँ।

0: It's been a year since this tragedy. Air India AI-171 logged off permanently, taking 260 people with it. The tragedy shocked everyone, as only one survivor walked out of the debris.
1: June 2025 was the day which shook the entire world. The horrible day for the more than 200 families who lost their close ones, near and dear ones. We are at the site after a year. This is the situation of the site which still shows the pain and the grief of the family, how the damage was done.
0: But it also brought immense emotional and tragic loss. A year on, the families are unable to recover from the void left by their loved ones, by their sudden demise. This tragedy has not just taken lives, it has also taken away the light of entire families who still don't know what led to the crash. We visit Parvez Vohra's home in Gujarat's Kheda district. Parvez, his 5-year-old daughter and his aunt died in the crash. Parvez Vohra had been living in London for the last 4 years. He had returned home with his 5-year-old daughter just 10 days before the tragedy. Parvez's brother had dropped him off at the airport when a news alert on his mobile phone shook the ground beneath his feet. At the time of the accident, Parvez's wife was 9 months pregnant in London.
2: अहमदाबाद से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में अहमदाबाद ही पहुंचा था. 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से. फिर मैं इमीडिएट वहां से जाने के लिए, वहां वापस रिटर्न जाने के लिए निकल गया. अराउंड 15-17 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर का फासला सिग्नल सब तोड़ के अहमदाबाद सिविल पहुंचा था. मैं सब वहां 12 जून को सब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी मैंने सब वार्ड में ढूंढा है. गुरुवार के दिन रात को अप्रॉक्स 9-10 बजे के तकरीबन हमको पता चल गया था कि सभी के सभी मेंबर डेथ हो चुके हैं, क्योंकि अनाउंस हो गया था कि जिसके भी मेंबर हॉस्पिटलाइज फ्लाइट के अंदर थे उनको डीएनए सैंपल देना है.
0: जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर परवेज़'स फ्यूनरल, हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन, टू अ वर्ल्ड विदाउट हिज फादर एंड सिस्टर. परवेज़'स ब्रदर नरेट्स व्हाट ही सॉ राइट आफ्टर एट द मॉर्ग.
2: मेरी फैमिली का हाल तो पूरा टूट चुका है, सब बिखर गया है. मतलब हेल्थ कॉन्शियस से लेके मेंटली डिसपॉइंट से लेके सब कुछ टूट चुका है. और मेरे ब्रदर की डेथ के बाद अप्रॉक्स आफ्टर 20 डेज मेरे ब्रदर का एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ, लेकिन भाई उसको देखने के लिए नहीं रहा. और जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी अपने बाप को अब कभी भी देख नहीं पाएगा.
0: We then travel to Diu to speak to Faizan's family, another London NRI who was on vacation. Faizan had gotten married just a few months before the tragedy.
3: 6 June ko wahan se nikla tha. UK se. Main idhar tha, meri mummy guzar gayi, to main idhar tha. Iske nanima ke paas tha raja leke aaya tha. Nanima mana kar rahi, beta abhi nahi jana. Ye saal ke abhi Eid gaye na, abhi Eid mein jana tha. Nahi, mere jana hai, mere wahan मेरे माँ के नाम की उजी करनी है, मेरे मेरे घर वाले के साथ शादी में एंजॉय करना है. तो बाद 10 दिन के 8 दिन की छुट्टी लेके आया था, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी.
0: Remember that in the crash, former Gujarat CM Vijay Rupani also perished. His family too reeling a year on from the tragedy.
4: एक पिता के खोने का दुख, मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है.
0: फॉर दीज फैमिलीज टाइम हैजंट हील्ड देयर वुंड्स एंड दे सीक क्लोजर, आंसर्स ऑन एग्जैक्टली व्हाट लेड टू द क्रैश इन व्हिच दे लॉस्ट देयर लव्ड वन. ब्रिजेश दोषी, ब्यूरो रिपोर्ट, India Today.

0: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता। समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता।
3: अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी थे बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते।

0: her camp in Lok Sabha, then the strength of the TMC in Lok Sabha goes down. They want to be recognized as a separate bloc. These 19 MPs with the claim of having 20 MPs, but only 19 signatures that they have produced in a letter before the Lok Sabha on the 18th of May, saying that Kakuli Ghosh Dastedar should be made the leader, made the chief whip here. Well, the drama only intensifying within the Trinamool Congress, with these MPs now saying that they want to be associated with the NDA and join that camp as a separate bloc. It, in fact, in a very big way, brings down the strength of the TMC, the original TMC, so to speak, within the Lok Sabha. The biggest jolt, perhaps, to Mamata as a close aide, Kalyan Banerjee, issues an ultimatum. The TMC MP launched a scathing attack on Abhishek Banerjee, accusing him of insulting senior leaders and told Mamata to choose between party and a nephew. Meanwhile, the exodus from the TMC continues, with Prakash Shik Baraik also resigning as a TMC Raj Sabha MP, Lok Sabha MP Prasoon Banerjee joining the rebel camp. Here's more.
1: Such an arrogant person, but Mamata ji has to choose whether Abhishek Banerjee he will keep or she will keep.
2: The words that will hurt and haunt Mamata Banerjee the most. Her trusted lieutenant, the voice of the TMC in Parliament, and an all-season loyalist, Kalyan Banerjee, is up in arms against Bhaipo Abhishek Banerjee and has delivered the biggest ultimatum to the former chief minister. Choose between blood and party. Speaking to India Today, the Shirampur MP blasted Abhishek, accusing him of insulting him and destroying the party.
1: This is humiliating. No. He never trusted me.
3: Never
1: trusted me. Right from 2022, you know what 2022, what I said about him. You know that.
4: Kolanda, you are on the front line.
1: Under compulsion, he was working. I was working with him. But he never trusted me. And he will never trust me.
2: Kalyan left Mamata with just one option. Choose Bhaipo or loyalist.
0: And we have more news coming in at this point in time. TMC MP Kirti Azad has made a big charge. He says security cover has been removed. He's spoken about this on camera when he brandishes an air gun and says, "We'll take care of my own protection." They're putting pressure by taking away my security and home guards. Unfortunately for them, I'm not going to succumb to their nasty tactics. Remember, one more MP signature is what they require at this point in time. He says, needless to add that I have received umpteen number of calls from various BJP MPs and organizational people. The idea is to dump the original TMC. That's what he's being pressurized. Listen in.
5: इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर यहाँ पर तस्वीरों में हम टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ
6: नहीं,
5: है
6: देखिए मैं फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया कुछ अटैक करे क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं मैं केवल ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ तो मेरी तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है हटा लिया जिस तरीके से 5 एमपीओ का हटा के उनके घर तोड़ दिए गए उनके परिवारजनों को डराया गया धमकाया गया कई की तो पत्नी और बेटियों के बाल खींचे गए उसके बाद में वो डर गए डर करके चले गए कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई कुछ की 50 में ही मान गए कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं उन्होंने 10-10 लाख रुपये महीना ले लिया ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ तो सब वहीं हुआ वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे उनकी भी डील वहीं हुई भूपेंद्र यादव के यहाँ जाकर के लोग मिले वो 8 ही लोगों ने साइन किया था आप लिस्ट देखिए तो 8 का एंक अलग है जो 14 से 18 दिए गए वो अलग है बीच के कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है उसका क्या है क्या नहीं है वो तो स्वतः स्पष्ट है तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था डराना था धमकाना था कुछ जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए जिस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया था तो उस पर CBI लगा दी थी तो वो यहाँ आ गया अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो काकुली दास भी पकड़ी गई थी दस्तीदार तो उसको भी उसी तरीके से बुलाया होगा कि भाई सीबीआई ईडी क्यों लगवाती है, वैसे ही आ जाओ तुम, तुमको यहाँ कुछ देख लेंगे। उसके साथ में लोग हैं, तीन चार लोगों ने दो मांगे माने 5 करोड़ में, 3 मांगे 50-50 लाख में, बाकी जो 3 थे उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपए महीना हमें सेट कर दीजिए, तो उसके घर से ही खबर मिलती है।
5: सुरक्षा वाली आप जो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत सारे लोगों की हटाई गई, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी थी या राज्य सरकार से थी, किस कैटेगरी की थी जिसको किया हटाया?
6: देखिए जिस समय मैं बीजेपी में था तब मेरे पास वाई प्लस थी। अच्छा। तो बीजेपी ने जब मुझे निकाल दिया, जब मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया था अरुण जेटली का DDCA में, मेरे कागज़ नहीं सरकारी कागज़ थे, तो उन्होंने मेरी सिक्योरिटी हटा दी थी। तब भी मेरे एक दो अटैक हुए थे, मैंने लिख के दिया था, मुझे ध्यान नहीं उसके ऊपर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, जिंदगी की परवाह नहीं की मैंने।
0: All right, so let's tell you a little more about other developments that we're reporting on. Complainant who filed a complaint against a Congress Neta that led to the rejection of Congress leader Meenakshi Natarajan's Raj Sabha nomination has now broken silence. While speaking to India Today, the complainant said she feels sad for Meenakshi but can't be blamed for what really happened. The complainant said a Congress worker harassed her, but no action was taken by the party leadership in spite of repeated appeals as the accuser is allegedly close to Telangana Chief Minister Revant Reddy. The rejection of Meenakshi's nomination led to a massive uproar, with the BJP and Congress launching scathing attacks on each other and the Election Commission's role coming under the lens. The rejection resulted in BJP candidates winning all 3 Raj Sabha seats from Madhya Pradesh. MP of Congress Rahul Gandhi came down heavily on the BJP and also accused it of vote chori. The Congress leader said Meenakshi had submitted all documents but her nomination was axed over a BJP objection. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav slammed the Congress and said it's time for the party to introspect. He questioned why Congress was fielding candidates with criminal records.
3: इस वक्त जो विवाद चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं?
7: पहली बात तो I'm really very sad वो मीनाक्षी दी के साथ ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन एक और बात ये है कि एक तो आई फील वेरी सैड फॉर दैट एंड सेकेंड पार्ट इज दैट सब लोग कुछ एलिगेशंस भी डाल रहे हैं जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एंड फर्स्ट थिंग मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने उनके ऊपर केस डालने की वजह भी क्या थी कि कुंभम शिवकुमार रेड्डी जो नारायणपेट का एक्स DCC है वो उनसे उनके ऊपर मैंने केस फाइल किया था 2022 में। तो तब मैंने जब कंप्लेंट किया था तब मानिकम टैगोर जी थे जो तब PCC प्रेसिडेंट थे, रेवंत रेड्डी जी जो अभी CM है। तो जब ये इंसिडेंट होने के बाद जब हम ये मीडिया में कुछ हलचल होने के बाद तब जाके उन्होंने वो जो DCC पोस्ट पे थे नारायणपेट के उसमें उनको हटाया गया।
0: Ravish is getting in more details on that story. The matter has now reached the Supreme Court as well, Ravish.
8: The matter is in Supreme Court and today around 12 p.m. Congress is saying that there will be a hearing in Supreme Court. Vivek right. Tanha and Abhishek Manu Singhvi will be there for the Congress side. And instead of it, all 3 candidates of the BJP has got their winning certificate yesterday only. There is a hearing in Supreme Court today, but one day before, all 3 candidates, Tarun Chugh, Rajneesh Agrawal and Mahesh Kewat, has got their winning certificate yesterday from the Vidhan Sabha. And now Congress is alleged that all of this is just a kind of seat chori by the BJP. Today, Congress is going to hold a protest outside BJP office in Madhya Pradesh, in Bhopal, and also the Regional Election Commission office in Bhopal. So there will be a lots of politics and a political drama taking place in Madhya Pradesh, in Bhopal, for this one nomination for the Rajya Sabha seat.
0: That's right. Of course, this has given the Congress an opportunity to say that this is a classic case of how the BJP steals votes. And this, in this case, it's a seat in Raj Sabha that has been stolen. I'm going to thank you for the moment, Ravish, getting in more details. Of course, we will be hearing from or watching out for those developments in the Supreme Court of India today. Well, it's time for a quick break here. On the other side, an exclusive conversation with Lata Rajnikanth, who's now announced a new people's movement. The exclusive conversation coming up in just 2 minutes.

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: प्रतिमा जी, इसमें किस बात की कितनी सच्चाई है कि आप भी बागी गुट में शामिल हो गई हैं? एक खबर आई कि कल एक मीटिंग हुई भूपेंद्र यादव के घर में, जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, वहां आप भी मौजूद थी, इस तरह की खबरें आई थी।
2: देखिए, आप मेरा कलकत्ता का जो घर है, आप वहीं पे बैठे हैं, और मैं आपके मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है, मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ, 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में। मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची, 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था, और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ, मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में वहीं पे हूँ, और जो दल बनाया है हमारा कोलिग ने, साथी ने, मैं उसमें साइन भी नहीं किया और दिल्ली में गए भी नहीं।
1: तो आपको क्या बुलावा आया था, आपको फोन आया था उसमें शामिल होने के लिए?
2: हाँ, फोन तो आया था, मेरे कोलिग से नहीं, दूसरे साइड से आया था,
1: बीजेपी।
2: मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जिन्होंने फोन किया है वो भी सम्मान मुझे दिया है, तो इसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ।
1: तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं?
2: देखिए, जो हमारा प्रतीक है, घासेर उपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीती हूँ, जनता ने मुझे आशीष दिया है। इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला, और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूंगी, तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। जनता ने तो मुझे नहीं बोला आप जाओ छोड़ के दूसरे साइड में, तो मैंने जनता को सम्मान देके उनका अपमानित नहीं करना चाहती हूँ, मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ। तो घासेर उपरे जोड़ा फूल, जो प्रतीक से मैं जीती हूँ, वही सही हूँ।

0: It's been a year since this tragedy. Air India AI-171 logged off permanently, taking 260 people with it. The tragedy shocked everyone, as only one survivor walked out of the debris.
1: June 2025 was the day which shook the entire world. The horrible day for the more than 200 families who lost their close ones, near and dear ones. We are at the site after a year. This is the situation of the site which still gives the shows the pain and the grief of the family, how the damage was done.
0: But it also brought immense emotional and tragic loss. A year on, the families are unable to recover from the void left by their loved ones, by their sudden demise. This tragedy has not just taken lives, it has also taken away the light of entire families who still don't know what led to the crash. We visit Parvez Vohra's home in Gujarat's Kheda district. Parvez, his 5-year-old daughter and his aunt died in the crash. Parvez Vohra had been living in London for the last 4 years. He had returned home with his 5-year-old daughter just 10 days before the tragedy. Parvez's brother had dropped him off at the airport when a news alert on his mobile phone shook the ground beneath his feet. At the time of the accident, Parvez's wife was 9 months pregnant in London.
2: अहमदाबाद से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में अहमदाबाद ही पहुंचा था 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से फिर मैं इमीडिएट वहां से जाने के लिए वहां वापस रिटर्न जाने के लिए निकल गया अराउंड 15-17 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर का फासला सिग्नल सब तोड़ के अहमदाबाद सिविल पहुंचा था मैं सब वहां 12 जून को सब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी मैंने सब वार्ड में ढूंढा है गुरुवार के दिन रात को अप्रॉक्स 9-10 बजे के तकरीबन हमको पता चल गया था कि सभी के सभी मेंबर डेथ हो चुके हैं क्योंकि अनाउंस हो गया था कि जिसके भी मेंबर हॉस्पिटलाइज फ्लाइट के अंदर थे उनको डीएनए सैंपल देना है
0: जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर परवेज़'स फ्यूनरल हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन टू अ वर्ल्ड विदाउट हिज फादर एंड सिस्टर परवेज़'स ब्रदर नरेट्स व्हाट ही सॉ राइट आफ्टर एट द मॉर्ग
2: मेरी फैमिली का हाल तो पूरा टूट चुका है सब बिखर गया है मतलब हेल्थ कॉन्शियस से लेके मेंटली डिसपॉइंट से लेके सब कुछ टूट चुका है और मेरे ब्रदर की डेथ के बाद अप्रॉक्स आफ्टर 20 डेज मेरे ब्रदर का एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ लेकिन भाई उसको देखने के लिए नहीं रहा और जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है वो भी अपने बाप को अब कभी भी देख नहीं पाएगा
0: We then travel to Diu to speak to Faizan's family, another London NRI who was on vacation. Faizan had gotten married just a few months before the tragedy.
3: So, June ko wahan se nikla tha. UK se. Main idhar tha, meri mummy guzar gayi, to main idhar tha. Iske nani ma ke paas tha raja leke aaya tha. Nani ma mana kar rahi, beta abhi nahi jana. Ye saal ke abhi Eid gaye na abhi. Eid mein jana tha, kaha nahi mere jana hai, mere wahan मेरे माँ के नाम की उजी करनी है ना मेरे मेरे घर वाले के साथ शादी में एंजॉय करना है तो बाद 10 दिन के 8 दिन की छुट्टी लेके आया था वहां छुट्टी नहीं मिलती थी
0: रिमेंबर दैट इन द क्रैश फॉर्मर गुजरात सीएम विजय रूपानी आल्सो पेरिश्ड हिज फैमिली टू रीलिंग अ ईयर ऑन फ्रॉम द ट्रेजेडी
4: एक पिता के खोने का दुख मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है
0: फॉर दीज फैमिलीज टाइम हैजंट हील्ड देयर वुंड्स एंड दे सीक क्लोजर आंसर्स ऑन एग्जैक्टली व्हाट लेड टू द क्रैश इन विच दे लॉस्ट देयर लव्ड वन ब्रिजेश दोषी ब्यूरो रिपोर्ट India Today.
5: On that note, we're pausing for a quick commercial break. On the other side, Karnataka BJP Chief B.Y. Vijendra speaks exclusively to India Today. That interview coming up. in just 2 minutes.

0: बनाया गया था। फिर बाद में अब मेरे केस को एक साल वन एंड हाफ ईयर के बाद क्लोज कर दिया गया लैक ऑफ एविडेंस। उसके बीच में जो है दो बार उनके जो एंटिसिपेटरी बिल्स थे वो दोनों भी डिसमिस हो गए। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आती है मुझे कि अभी तक मैं चार साल से मैं अभी भी उसी सोच में हूँ, क्यों नहीं पार्टी वाले उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मैंने मेरे इतने मैंने हाई कमांड में भी बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट किए हैं।
1: सस्पेंड किया है ऐसे बताया जा रहा है?
0: नहीं, कह रहे हैं पीसीसी अभी महेश अन्ना जो है वो कह रहे हैं कि सस्पेंड किए हैं। जो वही बात उन्होंने एएससी इंचार्ज मीनाक्षी दी के दी को भी वही बोला गया था। लेकिन जब उन्होंने पूछा था लेटर के लिए, कोई लेटर नहीं आया। फिर बाद में भी दीदी भी शांत हो गई। पता नहीं क्या चल रहा है इस केस में, मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद वो रेवंत रेड्डी जी के करीबी रिश्तेदार में है, शायद इस वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर वो रेड्डी कम्युनिटी के हैं और मैं बीसी कम्युनिटी की हूँ, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा ज्यादती हो रही।
2: ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस के पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा, आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था ये क्लैरिटी होनी चाहिए।
3: राज्यसभा में हम सबका सौभाग्य है, तीनों की तीनों सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने बीते समय मध्यप्रदेश में सरकार बनाई थी और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी। अब ये बड़े रिकॉर्ड बने जो भविष्यतः संभवतः एक तरह से हमारे सबके लिए गौरव करने वाले भी हैं। कांग्रेस की अंदरूनी जो कलह रही है, मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस अपना आत्मूल्यांकन करेगी।
4: Moving on, in a sensational twist to the Dharamsthala mass burial conspiracy case, the accused in the case, Chennaiah, has moved the Karnataka High Court, making some explosive claims. Actor Prakash Raj has also been named by Chennaiah in his plea. Prakash Raj has, however, dismissed those claims. Accused Chennaiah, who filed an explosive writ petition in the Karnataka High Court, his petition also outlines a massive, well-funded mechanism designed to fuel anti-Dharamsthala campaign. Chennaiah has also detailed how multilingual actor was allegedly drawn into the plot. According to Chennaiah, Prakash Raj spoke in Tamil and instructed him to repeat whatever the statement from former cops turned activist Girish Matanavar directed him to say before the probe officers. The petitioner further claimed that the actor promised to personally meet and embrace him on the 29th of June if he cooperated exactly as told. Prakash Raj broke his silence following a wave of shocking allegations linking him to the alleged massive 200 crore rupees conspiracy aimed at tarnishing the reputation of sacred Dharamsthala in Karnataka. He urged the public not to fall for a smear campaign, dismissing allegations and accused few of those trying to fabricate facts on a baseless story. With that, it is time for us to sip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned.

0: Again, we're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. And that's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250. Well, I'm not going to say that to you, but I can do that. Look, I could knock out. We have the most powerful. I built the military with these people approving it. And approved numbers that nobody would have ever thought we would have been. Iran, very simply, cannot have a nuclear weapon. And they won't. And they've agreed to that. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated. We have a fully negotiated, but they're tapping and tapping. And I say, well, all right, let's give them a couple of more days. They're tapping because it's a meaningful paper. They know when they sign that paper, it's meaningful.
1: देखिए हम लोग तो देश के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज राहुल जी के अलावा कुछ मुझे नजर नहीं आता. इसलिए नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, एक्चुअल में राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता. अब राहुल गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता. समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता.
2: अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं. किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी थे बीजेपी. तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते हैं.

0: and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. Filmmaker Imtiaz Ali has reunited with Diljit Dosanjh for the film Main Vaapas Aaunga after the success of Amar Singh Chamkila. Also starring Nasruddin Shah, Vedang Raina and Sharvari, the film unfolds a poignant love story set against the backdrop of the partition of India. Here are more details on this.
1: Kahani hai romantic. जो 78 ईयर से इनके माइंड में चल रही है ये किस्सा है एक सपनों की दुनिया का
2: इन इम्तियाज अलीज वर्ल्ड लव इज नेवर जस्ट अ फीलिंग इट इज अ जर्नी दैट लिंगर्स इन स्टोलन ग्लांसेस अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस एंड मेमोरीज दैट रिफ्यूज टू फेड अवे

0: 같은 이유라나?
1: 박사님 깨워게 아무지. 나 옛날에 살까 위니 그런 거.
0: 뭐가라 말이 샤디 오고 또? फिर भी नहीं करेंगे उसे
2: अमन है इश्क मस्ताना अमन को होशियारी क्या अमन जब साथ
3: जी हाँ मैं नहीं जाऊंगा वादा है मेरा
4: जी हाँ
5: मैं वापस आऊंगा टेक्स अस ऑन वन सच जर्नी
0: नज़्म शायर की जुबानी अच्छी लगती है
6: एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना
5: फीचरिंग दिलजीत दोसांझ नसीरुद्दीन शाह Vedang Rena and Sharvari. The film is a contemporary and witty narrative that explores the depth of human connection and promises to be an exciting cinematic experience.

0: देखिए, हम लोग तो देश के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज राहुल जी के अलावा कुछ मुझे नजर नहीं आता। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, एक्चुअल में राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता। अब राहुल गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए, और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता। समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता।
1: अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी, और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अफसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते।

0: ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था। जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा, एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा कपट था, छल था। और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, हाँ, आप और कुछ निकलते जा रहे हैं, ये पार्टी, आपको और क्या चाहिए? आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है।
1: A status update on MT Setebello. You would have seen our statement yesterday condemning the attack on the commercial vessel MT Setebello, a Palau flagged ship off the coast of Oman. There were 28 crew members on board, including 24 Indian nationals. Out of the 24 Indian nationals, 21 have been safely rescued. Unfortunately, 3 Indian nationals have lost their lives. We express our deepest condolences to the families of the deceased. Our mission in Oman is in close touch with the concerned authorities for early repatriation of their mortal remains. Our mission is also rendering all assistance to the rescued Indian seafarers and remains in touch with the concerned authorities for their early return to India.

0: Again, we're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you, because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. And that's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250. Well, I'm not going to say that to you, but I can do that. Look, I could knock out. We have the most powerful. I built the military with these people approving it. And approved numbers that nobody would have ever thought we would have been. Iran, very simply, cannot have a nuclear weapon. And they won't. And they've agreed to that. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated. We have a fully negotiated, but they're tapping and tapping. And I say, all right, let's give them a couple of more days. They're tapping. Because it's a meaningful paper. They know when they sign that paper, it's meaningful.
1: देखिए, हम लोग तो देश के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज राहुल जी के अलावा कुछ मुझे नज़र नहीं आता. इसलिए नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, एक्चुअल में राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता. अब राहुल गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए, और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता. समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता.
2: अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं. किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी, और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी. तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते हैं.

0: if catastrophe had a picture, it would be this. As I have walked in over the last 1 kilometer, all I have seen, and I will show you, in time, there are fires which are still being put out, and this is the tail end of the aircraft, of what you can see on the crash landing of AI-171 London bound. I want to immediately try and get our viewers a sense in terms of what really happened. I have a nurse, because this was a hostel for medical students. I have a staff nurse who works at the
1: Ashram quarters.
0: She lives at the Ashram quarters, which is right next to this particular hostel. And ma'am, sabse pehle apna naam bataye.
1: मेरा नाम है आरती साधु. मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ. आई डिपार्टमेंट में हूँ. हाँ, तो हम सो रहे थे तो एक धड़ाका हुआ, तो हमने देखा तो बाहर निकले तो सब धुआं धुआं धुआं और आग फैली हुई थी चारों तरफ. सब आग, कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं ही धुआं दिखता था.
0: I'm standing at the crash site, and this was the cockpit side, the front of the plane. And then if you go all the way back, you can see the tail end as well. And what you can actually see is a visual of absolute catastrophe. The tragedy and the scale of it can be counted, viewers, if you look at the strewn clothes, medicine, slippers. I saw a watch of all the passengers who were on board. This was the business class section, and those who have been standing here tell us that this is where most, and probably Mr. Rupani, the first class section and the business class section bodies were pulled out. I have with me, sir, kya naam hai aapka?
2: Nitin Shah.
0: Nitin Shah. Aap RSS se hain?
2: Ji.
0: Yahan pe subah se hain?
2: हाँ, जब से
0: दोपहर, मतलब
2: यहाँ पे तो पूरा फायर था. नियर अबाउट 4 o'clock तक पूरा यहाँ पे आने जैसा जगह नहीं था. एक्चुअली जो हुआ ना, लास्ट में जो बिल्डिंग है ना, लास्ट वहाँ पे टेल, हाँ, वो थोड़ा हुआ था और उसकी वजह से पूरा यहाँ पे आके लैंड हो गया. बाकी लगभग कोई नहीं बचा है.
0: तो आपने मदद किया एक एक
2: जैसे? जी हाँ, एक्चुअली जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पर तो ऐसा था कि पूरा जो भी बॉडी वगैरह था पूरा ब्लेंड था, तो काफी दिक्कत भी हुई. 4 से 5 बॉडी तो हमने भी हाथ से लगाकर भेजा था यहाँ पे से. और इनिशियली स्टाफ वगैरह गवर्नमेंट का जो भी आया, उसके पहले कई ऑटो रिक्शा वाले, कई प्राइवेट टैक्सी वगैरह वाले, उन्होंने भी सपोर्ट किया. वो भी यहाँ से बॉडी को लेके गए थे.
0: इट्स ओवर अ कोर्स ऑफ अबाउट 600 मीटर्स. दिस बिल्डिंग राइट देयर कंप्लीटली चार्ज. देयर स्मोक स्टिल बेलोइंग फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोर्स. आई आस्क संजय टू एक्चुअली जीरो इन देयर. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फॉर अबाउट 300 मीटर्स. दिस इज लाइक आई सेड द मेस एरिया. ब्रिक मॉर्टर रिमेन्स ऑफ द aircraft, the debris, mattresses, and broken dreams of young lives who wanted to make it big. All sitting, eating lunch, not knowing that a plane is going to ram into their building. That's the wheel of the aircraft. That's the tail end of the body. You can actually see a part of the Maharaja Air India's logo right there. Mattresses of students' rooms, their beds there, and bloodstains. And this was the mess. Sanjay just show you, this was the mess. And this is all but destroyed. And this is where the young students were sitting there grabbing lunch. You know, this is heartbreaking. Clearly somebody was eating his meal right here. And I can, you know, I've counted the number of thalis, that more than 25. This is where they were sitting. Sanjay, just turn around. I'll ask Sanjay, and then you can get a view of how the aircraft actually slammed into this building. That is what I showed you right there. That's the tail end of that aircraft. This is the, you know, the tables, the benches. And you can see their meal uneaten right here. आपका पूरा टीम कितना एम्बुलेंस के साथ आया?
3: शायद पांच मिनट में तो ज्यादा से ज्यादा सब 105 आ गई थी यहाँ पे। मेघारी नगर आई थी, चमनपुरा और ये

0: They've given their DNA samples to be matched with the bodies that have bought in. I was speaking to the lady there. She's a staffer here at the civil hospital. And what she says is that in their entire list of that they have, there is only one person who's not in, and that's the name of the survivor.
1: Basically, state government has, after this incident, made an order for IS officers to look in various capacities. So I'm looking after this DNA sampling exercise that we are doing here.
0: Ronit, aap local hai?
2: Haan, yeah, main local rehta hun. Paas mein mera ghar hai. जब ब्लास्ट हुआ तो मैं बैठा था, खाना वाना खा रहा था और निकले हम लोग तुरंत ही. तो हम लोग ब्लास्ट की जगह पे पहुंचे, वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे अंदर जाना. तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग मिलके हम लोग यहां पे जो पीएम रूम है वहां पे पहुंचे. वहां मनीष सुतरिया साहब है जो हेड है, वो मेरे वहां पे, वो अकेले और कुछ स्टाफ वाले ही काम कर रहे थे. बॉडीज आ रही थी, फिर हम लोगों ने सबने मिलके वहां पे बॉडीज को उठाया. फिर ये रूम पूरा पीएम रूम पैक हो गया था, इतनी बॉडीज थी.
0: पोस्टमार्टम रूम पूरा
2: पैक हो गया. जो फ्रोजन एरिया था वहां पे भी बॉडीज थी. जो पीछे का बैक साइड का, जो सामने बैक साइड का फ्रोजन एरिया, वो भी पैक हो गया. फिर उन लोगों ने हमको बोला कि आप लोग थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो अब बॉडीज को आगे ट्रोमा सेंटर, जो पुराना ट्रोमा सेंटर था, वहां पे ले जाइए. फिर हम लोग वहां पे लेके गए ट्रोमा सेंटर को. और ट्रोमा सेंटर में से जितनी वहां पे से, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, हमने सारी एम्बुलेंस को वहां पे रोका और वहां से हम लोग ने बॉडीज को अंदर रवाना किया.
3: मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? ऐसे से आप नीट खरीद सकते हो, गोरी मेरे सबसे नीटिया से आएगी. एक करो मैं युद्ध देती हूँ, मुझे मेरा पापा, मुझे पापा वापस लाए को बोलो. एक करो मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो. अब किस सबसे ही मेरे पापा गए है ना, आपको चेयर करना था, पहले क्यों नहीं चेक किया? ऐसे हंसने के शिकार बनते हैं लोग. और ये एक करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के लगते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है? एयर इंडिया वाले एक करोड़ देंगे क्या? एक करोड़ देंगे वो? मैं आपको 2 करोड़ दूंगी. मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी वहां थी, मुझे तो वापस कीजिए. 2 करोड़ मैं दूंगी आपको. चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को.
0: That's what heartbreak looks like. That's what heartbreak sounds like. Falguni, right there, has lost her father. She wants to give 2 crores. She wants to give 2 crores to Air India to get her father back. Her mother, her father, gone.

0: for survivors, for family members who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
1: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे ही मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है
0: रोमिल वोहरा हैड जस्ट बेड गुडबाय टू हिज ब्रदर परवेज वोहरा एंड हिज 5-year-old डॉटर ऑन 12th जून 2025 व्हेन द न्यूज़ फ्लैश ऑफ द क्रैश ऑन हिज मोबाइल फोन shook the ground beneath his feet.
2: अहमदाबाद से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में अहमदाबाद ही पहुंचा था 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से फिर मैं इमीडिएट वहां से जाने के लिए वहां वापस रिटर्न जाने के लिए निकल गया अराउंड 15-17 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर का फासला सिग्नल सब तोड़ के अहमदाबाद सिविल पहुंचा था मैं सब वहां 12 जून को सब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी मैंने सब वार्ड में ढूंढा है गुरुवार के दिन रात को अप्रॉक्स 9-10 बजे के तकरीबन हमको पता चल गया था कि सभी के सभी मेंबर डेथ हो चुके हैं क्योंकि अनाउंस हो गया था कि जिसके भी मेंबर हॉस्पिटलाइज फ्लाइट के अंदर थे उनको डीएनए सैंपल देना है
0: परवेज बोहरा हैड अनदर डॉटर एंड हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट दे वर इन लंदन परवेज़'स वाइफ एंड एल्डर डॉटर केम होपिंग He and his younger daughter were alive.
2: मेरी फैमिली का हाल तो पूरा टूट चुका है सब बिखर गया है मतलब हेल्थ कॉन्शियस से लेके मेंटली डिसपॉइंट से लेके सब कुछ टूट चुका है और मेरे ब्रदर की डेथ के बाद अप्रॉक्स आफ्टर 20 डेज मेरे ब्रदर का एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ जो उसकी ड्रीम थी कि ऊपर वाला उससे ऑलरेडी उसको दो बेटियाँ थी उसमें से एक बेटी चली गई दो बेटियों के बाद उसके एक बेटे की ख्वाहिश थी जो ऊपर वाले ने पूरी की लेकिन भाई उसको देखने के लिए नहीं रहा और जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है वो भी अपने बाप को अब कभी भी देख नहीं पाएगा
0: There were 14 people from Diu in that flight. No one survived. Faizan was one of them. He had come back from London on a vacation and got married days before the accident.
3: 6 जून को वहां से निकला था यूके से मैं इधर था मेरी मम्मी गुजर गई तो मैं इधर था इसके नानी माँ के पास था रजा लेके आया था नानी माँ मना कर रही बेटा अभी नहीं जाना इस साल की अभी ईद गई ना अभी ईद में जाना था नहीं मेरे जाना है मेरे वहाँ मेरे माँ के नाम की उजी करनी है ना मेरे घर वाले के साथ शादी में एंजॉय करना है तो बाद 8 दिन की छुट्टी लेके आया था वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी
0: Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was going to London on 12th June 2025 to spend time with his daughter.
4: एक पिता के खोने का दुख मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है
5: 12 जून 2025 वाज द डे व्हिच शुक द एंटायर वर्ल्ड the horrible day for the more than 200 families who lost their close ones, near and dear ones. We are at the site after a year. This is the situation of the site, which still gives the shows the pain and the grief of the family, how the damage was done.
0: There was one miraculous survivor. British citizen Vishwas Kumar Ramesh was seated next to an emergency exit. In seat 11A, he escaped through a breach in the fuselage, while everyone, including his brother, perished. With Brijesh Doshi in Ahmedabad, Bureau Report, India Today.
6: As we reported, we figured that this would be the deadliest civil aviation disaster globally in the 2020s and the first fatal hull loss of a Boeing 787 Dreamliner. Big questions started rolling in. What happened in those 32 seconds of IC-171? And honestly, it was the most difficult one to track. The recovery of the black box data didn't conclusively prove what was at fault. Was it technical? Was it human error? The investigation has now reached the court. The final comprehensive AAIB report is still pending. The loved ones of those on board IC-171 still have no answers.

0: ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था। जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा, एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा कपट था, छल था। और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, हाँ, आप और कुछ निकलते जा रहे हैं, ये पार्टी, आपको और क्या चाहिए? आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है।
1: स्टेटस अपडेट ऑन एमटी सेतेबेलो, यू वुड हैव सीन आवर स्टेटमेंट यस्टरडे कंडेमिंग द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल एमटी सेतेबेलो, अ पलाव फ्लैगशिप ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। देयर वर 28 मेंबर्स, crew members on board, including 24 Indian nationals. Out of the 24 Indian nationals, 21 have been safely rescued. Unfortunately, 3 Indian nationals have lost their lives. We express our deepest condolences to the families of the deceased. Our mission in Oman is in close touch with the concerned authorities for early repatriation of their mortal remains. Our mission is also rendering all assistance to the rescued Indian seafarers and remains in touch with the concerned authorities for their early return to India.

0: better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected.
6: This is 80s hits, exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now, and thank us later.
8: Or a company partnership. Education policy about inclusion and awareness has not yet translated into textbooks. There are positive steps being taken by some states also for employment, education, even medical treatment. Queer couples and activists have now gone back to court for some specific small issues that could make their life easier.
9: देखिए हम लोग तो देश के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज राहुल जी के अलावा कुछ मुझे नजर नहीं आता इसलिए नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं एक्चुअल में राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता अब राहुल गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता
10: अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान राष्ट्रीय महिला प्रधान कभी टीएमसी अभी टीएमसी से बीजेपी तो ये अफसरवादियों के बारे में क्या कहें मैं कहीं भी जा सकते हैं

0: These images are not from Otawa village in Madhya Pradesh's Dhar district. The Jal Jeevan Mission pipeline is here. Water is not. In searing 43 degree heat, women are forced to depend on water that seeps slowly through the cracks in the earth.
1: 50 feet niche wo mahilaen aapko dikh jayengi pani ke kanastar liye hui. Wo jo aap dekh rahe hain andaaza laga sakte hain aap ki kitna kathin hota hoga. क्यों? क्योंकि इस तरीके से पानी के छोटे छोटे पोखर यहाँ बने हुए हैं. आप देखिए, ये गहरी खाई है, कोई बरसाती नदी है जिसकी गहराई में ये जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं, इसी में से ये लोग पानी भरते हैं.
0: Far from the village, at the bottom of the ravine, sits a tiny pit. This is where water collects. To understand the reality on the ground, India Today's Ravish Pal Singh took the same route these women travel every day.
1: मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहाँ से ये महिलाएं पानी भरती है, उससे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूँ और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है. और महिलाएं, छोटे बच्चे इसी तरीके से रोजाना यहाँ से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं.
0: What awaits at the bottom is startling. There is no flowing stream, no functioning tap, just water dripping. One drop at a time.
1: बेहद महीन सी एक धार है. ये पानी की धार इतने धीरे धीरे धीरे जमीन के अंदर से निकलती है और वो जाकर के इस पोखर में भरती है. ये जो आप देख रहे हैं पोखर, इसमें ये पानी आकर के भरता है. बताते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है इस पोखर को भरने में.
0: The women know the risks, but they also know they have no choice. The pipeline was laid 2 years ago. The promised water never arrived.
2: हमारे उधर तो पानी नहीं आता है. हम तो सिर पे उठा के ले जाते हैं, किलोमीटर दूर ले जाते हैं.
1: क्या गांव का नाम है?
2: उटावा.
1: उटावा.
2: हाँ, उटावा. और
1: रोज ही आते हो आप लोग?
2: रोज ही आते हैं.
0: The local MLA says the slogan of हर घर नल हर घर जल remains confined to speeches, while villagers continue to risk their lives for drinking water.
3: डबल इंजन की सरकार में जनता को हर घर जल हर घर नल के सपने दिखाए गए. बस जनता की प्यास बुझाने को पानी फरार है. योजना में भारी भ्रष्टाचार की बहार है.
0: द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हाउएवर सेज अ 1.17 करोड़ रुपी जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर टू द ग्राम पंचायत. Officials blame the shortage on falling groundwater levels.
4: इस वर्ष गर्मी के कारण जो डगमगल विभाग द्वारा किया गया था उसमें पानी जलस्तर पूरी तरह से समाप्त खत्म हो गया है, परंतु नलकूप में अभी जलस्तर कम हो गया. हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है.
0: On paper, crores have been spent. On the ground, women are still climbing into a 50-foot ravine for water. In Otawa, every drop tells a story. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
5: A continuing series on drinking water crisis in the country, the real stories that matter. I want to leave you though with a happier story. Now, in this season of government exams, most job aspirants dream of clearing just one government exam. But today I want to bring you the story of a young woman who in Chhattisgarh has cracked 19 of them. That's right, 19. From SSC and banking to railways and state recruitments. This is a remarkable success story which could inspire many others. Take a look. Stay well. Good night. Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.
6: For Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
7: SSC CGL hai, CHSL hai, MTS hai. Matlab ye sab pattern to ek hi follow karte hai, bas syllabus kam zyada hoti thi to main sara form dalte gayi. Kisi ka result pehle aata tha, kisi ka result late aata tha.
6: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
7: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. हाँ. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
6: She used digital resources extensively during her preparations.
7: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, इंस्टा पे रील्स डालते थे टीचर्स. हाँ. तो वहां से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने. हाँ. बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
6: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumeer Rajapan, Bureau Report, India Today.
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find

0: If catastrophe had a picture, it would be this. As I have walked in over the last 1 kilometer, all I have seen, and I will show you, in time, there are fires which are still being put out, and this is the tail end of the aircraft, of what you can see on the crash landing of AI-171 London bound. I want to immediately try and get our viewers a sense in terms of what really happened. I have a nurse, because this was a hostel for medical students. I have a staff nurse who works at the
1: Ashrayam quarters.
0: She lives at the Ashrayam quarters, which is right next to this particular hostel. And ma'am, sabse pehle apna naam bataye.
1: मेरा नाम है आरती साधु. मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ. आई डिपार्टमेंट में हूँ. हाँ, तो हम सो रहे थे तो एक धड़ाका हुआ, तो हमने देखा तो बाहर निकले तो सब धुआं धुआं धुआं और आग फैली हुई थी चारों तरफ. सब आग कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं ही धुआं दिखता था.
0: I'm standing at the crash site, and this was the cockpit side, the front of the plane. And then if you go all the way back, you can see the tail end as well. And what you can actually see is a visual of absolute catastrophe. The tragedy and the scale of it can be counted. Viewers, if you look at the strewn clothes, medicine, slippers, I saw a watch. Of all the passengers who were on board, this was the business class section, and those who have been standing here tell us that this is where most, and probably Mr. Rupani, the first class section and the business class section bodies were pulled out. I have with me, sir, kya naam hai aapka?
2: Nitin Shah.
0: Nitin Shah. Aap RSS se hain?
2: Ji.
0: Yahan pe subah se hain?
2: हाँ, जब से
0: दोपहर, मतलब
2: यहाँ पे तो पूरा फायर था. नियर अबाउट 4 o'clock तक पूरा यहाँ पे आने जैसा जगह नहीं था. एक्चुअली जो हुआ ना, लास्ट में जो बिल्डिंग है ना, लास्ट वहाँ पे टेल, हाँ, वो थोड़ा हुआ था और उसकी वजह से पूरा यहाँ पे आके लैंड हो गया. बाकी लगभग कोई नहीं बचा है.
0: तो आपने मदद किया एक एक
2: जी? हाँ, एक्चुअली जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पर तो ऐसा था कि पूरा जो भी बॉडी वगैरह था पूरा ब्लेंड था, तो काफी दिक्कत भी हुई. 4 से 5 बॉडी तो हमने भी हाथ से लगाकर भेजा था यहाँ पे से. और इनिशियली स्टाफ वगैरह गवर्नमेंट का जो भी आया, उसके पहले कई ऑटो रिक्शा वाले, कई प्राइवेट टैक्सी वगैरह वाले, उन्होंने भी सपोर्ट किया. वो भी यहाँ से बॉडी को लेके गए थे.
0: इट्स ओवर अ कोर्स ऑफ अबाउट 600 मीटर्स. दिस बिल्डिंग राइट देयर कंप्लीटली चार्ड. देयर स्मोक स्टिल बेलोइंग फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोर्स. आई आस्क संजय टू एक्चुअली जीरो इन देयर. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फॉर अबाउट 300 मीटर्स. दिस इज लाइक आई सेड द मेस एरिया. ब्रिक मोर्टर रिमेन्स ऑफ द aircraft, the debris, mattresses, and broken dreams of young lives who wanted to make it big. All sitting, eating lunch, not knowing that a plane is going to ram into their building. That's the wheel of the aircraft. That's the tail end of the body. You can actually see a part of the Maharaja Air India's logo right there. Mattresses of students' rooms, their beds there, and bloodstains. And this was the mess. Sanjay will just show you, this was the mess. And this is all but destroyed. And this is where the young students were sitting there grabbing lunch. You know, this is heartbreaking. Clearly somebody was eating his meal right here. And I can, you know, I've counted the number of thalis, that more than 25. This is where they were sitting. Sanjay, just turn around. I'll ask Sanjay, and then you can get a view of how the aircraft actually slammed into this building. That is what I showed you right there. That's the tail end of that aircraft. This is the, you know, the tables, the benches. And you can see their meal uneaten right here. आपका पूरा टीम कितना एम्बुलेंस के साथ आया?
3: शायद पांच मिनट में तो ज्यादा से ज्यादा सब 105 आ गई थी यहाँ पे, मेघारी नगर आई थी, चमनपुरा और ये चामुंडा ब्रिज।
4: तो आपका कॉल नहीं आया था, जस्ट लोग हम खाना खा रहे थे, हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हमारी ऑफिस है, 1200 बेड हॉस्पिटल, 1200 बेड यहाँ से 200 मीटर दूर है, 1200 बेड कैंप सिविल हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, मतलब खाना खाने बैठे थे, टिफिन हमारे सब खोल दिया था, जैसे हमने खोला सब ब्लास्ट हुआ, बहुत तरह धुआं और आग निकलने, तो वहाँ से हम खाना छोड़ के, नहीं कॉल नहीं आया था, कॉल नहीं आया था, सीधा हम सर्वाई के लिए चले गए।
3: मेरे पे कॉल आया था, मेरे चामुंडा ब्रिज को कॉल आया था, ज्यादा से ज्यादा मैं पहुंच गया था, 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया था।
0: कितने लोगों को रेस्क्यू किया?
5: मैंने मैडम 3-4 जिंदा बंदी को ले गया, और
0: जो लेके गए वो स्टूडेंट था, हॉस्टल से लेके गए या मेस से?
5: बाहर से जैसे बोला थे हम,
0: कैसे लेके गए आप उनको? ले स्टूडेंट्स थे सर?
5: नहीं स्टूडेंट नहीं, यहाँ से ले गए, स्टूडेंट ही सर।
0: और कितना लोग लेके गए यहाँ से?
5: लगभग 3-4 आदमी जिंदा लेके गए और 6 बॉडीज भी लेके गए।
0: So basically, over 150 families have already come in. They've given their DNA samples to be matched with the bodies that have brought in. I was speaking to the lady there. She's a staffer here at the civil hospital. And what she says is that in their entire list of that they have, there is only one person who's not in, and that's the name of the survivor.
6: Basically, state government has, after this incident, made an order of 4 IS officers to look in various capacities. So I'm looking after this DNA sampling exercise that we are doing here.
0: Ronit, आप local
7: हैं? हाँ, यहाँ मैं local रहता हूँ। पास में मेरा घर है। जब ब्लास्ट हुआ तो मैं बैठा था, खाना वाना खा रहा था और निकले हम लोग तुरंत ही, तो हम लोग ब्लास्ट की जगह पे पहुंचे। वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे अंदर जाना, तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग मिलके हम लोग यहाँ पे जो पीएम रूम है वहां पे पहुंचे। वहां मनीष सुतरिया साहेब है जो हेड है, वो मेरे वहां पे, वो अकेले और कुछ स्टाफ वाले काम कर रहे थे, बॉडीज आ रही थी, फिर हम लोगों ने सबने मिलके वहां पे बॉडीज को उठाया, फिर ये रूम पूरा पीएम रूम पैक हो गया था, इतनी बॉडीज थी।
0: पोस्टमार्टम रूम पूरा
7: पैक हो गया, जो फ्रोजन एरिया था वहां पे भी बॉडीज थी, जो पीछे का बैक साइड का, जो सामने बैक साइड का फ्रोजन एरिया वो भी पैक हो गया। फिर उन लोगों ने हमको बोला कि आप लोग थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो अब बॉडीज को आगे ट्रोमा सेंटर, जो पुराना ट्रोमा सेंटर था वहां पे ले जाइए। फिर हम लोग वहां पे लेके गए ट्रोमा सेंटर को, और ट्रोमा सेंटर में से जितनी वहां पे से, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, हमने सारी एम्बुलेंस को वहां पे रोका और वहां से हम लोग ने बॉडीज को अंदर रवाना किया।
8: मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? ऐसे से आप नीट खरीद सकते हो, गोरी मेरे सबसे नीट कैसे आएगी? एक करो मिल जुल तो देती हूँ, मुझे मेरा पापा, मुझे पापा वापस लाइए को बोलो, एक करो मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अब सबसे ही मेरे पापा गए है ना, आपको चेक करना था, पहले क्यों नहीं चेक किया? कोई ऐसे हंसने के शिकार बनते हैं लोग। और ये एक करोड़ में खड़ी दोगी मेरे पापा को, आप क्या मजाक बना के रखते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है, एयर इंडिया वाले एक करोड़ देंगे क्या? एक करोड़ देंगे वो, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी वहां थी, तो वापस कीजिए, 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को, क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी जान को?
0: That's what heartbreak looks like, that's what heartbreak sounds like. Falguni, right there, has lost her father. She wants to give 2 crores. She wants to give 2 crores to Air India to get her father back. Her mother, her father, gone.

0: The story very quickly shifted from the accident site to the hospitals where the victims were taken in. Some of them in complete charred conditions, body parts. And with it came a flood of relatives in disbelief. Empathy for a television journalist is easier said than done. Very difficult to document grief, painstaking to document grief. How do you draw that boundary and yet respect people whose lives forever have turned upside down? Families of victims, one survivor, that was confirmed. That, to me, as a journalist, was the hardest part, because I remember me and my camera person stayed the course of the night at the hospital. Every 20 minutes, you would see a loved one walk in, a family walk in. Those who lived near came in quicker. Those who came in from other cities, some of them were flying in from London. And for the next 48 hours, to hold that grief in, to document that grief, has been, after COVID, my toughest assignment.
1: Mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June, 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
2: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे है मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है
1: रोमिल वोहरा हैड जस्ट बेड गुडबाय टू हिज ब्रदर परवेज वोहरा and his five-year-old daughter on 12th June 2025. When the news flash of the crash on his mobile phone shook the ground beneath his feet.
3: अहमदाबाद से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में अहमदाबाद ही पहुंचा था 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से फिर मैं इमीडिएट वहां से जाने के लिए वहां वापस रिटर्न जाने के लिए निकल गया अराउंड 15-17 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर का फासला सिग्नल सब तोड़ के अहमदाबाद सिविल पहुंचा था मैं सब वहां 12 जून को सब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी मैंने सब वार्ड में ढूंढा है गुरुवार के दिन रात को अप्रॉक्स 9-10 बजे के तकरीबन हमको पता चल गया था कि सभी मेंबर डेथ हो चुके हैं क्योंकि अनाउंस हो गया था कि जिसके भी मेंबर हॉस्पिटलाइज फ्लाइट के अंदर थे उनको डीएनए सैंपल देना है
1: परवेज बोहरा हैड अनदर डॉटर एंड हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट at the time of the accident. They were in London. Parvez's wife and elder daughter came hoping he and his younger daughter were alive.
3: Meri family ka hal to pura toot chuka hai. Sab bikhar gaya hai. Matlab health conscious se leke mentally disappointed se leke sab kuch toot chuka hai. Aur mere brother ki death ke baad approx after 20 days mere brother ka ek baby boy born hua jo uski ड्रीम थी कि ऊपर वाला, उससे ऑलरेडी उसको दो बेटियां थी, उसमें से एक बेटी चली गई, दो बेटियों के बाद उसके एक बेटे की ख्वाहिश थी जो ऊपर वाले ने पूरी की, लेकिन भाई उसको देखने के लिए नहीं रहा। और जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी अपने बाप को अब कभी भी देख नहीं पाएगा।
1: There were 14 people from Diu in that flight. No one survived. Faizan was one of them. He had come back from London on a vacation and got married days before the accident.
4: छह जून को वहां से निकला था, यूके से। मैं इधर था, मेरी मम्मी गुजर गई तो मैं इधर था, इसके नानी माँ के पास था, रजा लेके आया था। नानी माँ मना कर रही, बेटा अभी नहीं जाना, इस साल की अभी ईद गए ना, अभी ईद में जाना था। नहीं, मेरे जाना है, मेरे वहाँ मेरे माँ के नाम की उजी करनी है ना, मेरे घर वाले के साथ शादी में एंजॉय करना है। तो बाद 10 दिन के 8 दिन की छुट्टी लेके आया था, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी।
1: Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was going to London on 12th June 2025 to spend time with his daughter.
5: एक पिता के खोने का दुख, मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है।
6: 12 June 2025 was the day which shook the entire world. The horrible day for the more than 200 families who lost their close ones, near and dear ones. We are at the site after a year. This is the situation of the site which still shows the pain and the grief of the family, how the damage was done.
1: There was one miraculous survivor.

ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था। जिस तरह से आप बूथ बूथ के आंकड़े आ रहे हैं आपने देखा होगा, एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा कपट था, छल था। और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। आपको इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, हाँ, आप और कुछ निगलते जा रहे हैं, ये पार्टी, आपको और क्या चाहिए? आपके पास पश्चिम बंगाल में और लोकसभा में पूरा बहुमत है।

0: And welcome. You're watching In the Club. I am Susan. Filmmaker Imtiaz Ali has reunited with Diljit Dosanjh for the film Main Vaapas Aaunga after the success of Amar Singh Chamkila. Also starring Nasruddin Shah, Vedang Raina, and Sharvari, the film unfolds a poignant love story set against the backdrop of the partition of India. Here are more details on this.
1: Kahani hai romantic. जो 78 ईयर से इनके माइंड में चल रही है
2: ये चेहरे महके हैं
1: ये किस्सा है एक सपनों की दुनिया का
2: दिल फरेब सी
3: इन इम्तियाज अलीज वर्ल्ड लव इज नेवर जस्ट अ फीलिंग इट इज अ जर्नी दैट लिंगर्स इन स्टोलन ग्लांसेस अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस एंड मेमोरीज दैट रिफ्यूज टू फेड अवे

0: डिटेक्ट नहीं हो रहा था।
1: पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा।
0: मगर हमारी शादी हो गई तो फिर भी नहीं करेंगे ऐसा?
2: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ
1: जिया। मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा जिया।
3: मैं वापस आऊंगा, टेक्स अस ऑन वन सच जर्नी।
0: शायद की जुबान ही अच्छी लगती है।
4: एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना।
3: फीचरिंग दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना एंड शर्वरी। द फिल्म इज अ कंटेम्प्रेरी एंड विटी नैरेटिव दैट एक्सप्लोर्स द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एंड प्रॉमिसेस टू बी एन एक्साइटिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस।

0: These images are not from Otawa village in Madhya Pradesh's Dhar district. The Jal Jeevan Mission pipeline is here. Water is not. In searing 43 degree heat, women are forced to depend on water that seeps slowly through the cracks in the earth.
1: 50 feet niche wo mahilaye aapko dikh jayengi pani ke kanastar liye hui. Wo jo aap dekh rahe hain andaaza laga sakte hain aap ki kitna kathin hota hoga. क्यों? क्योंकि इस तरीके से पानी के छोटे छोटे पोखर यहाँ बने हुए हैं. आप देखिए, ये गहरी खाई है, कोई बरसाती नदी है जिसकी गहराई में ये जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं, इसी में से ये लोग पानी भरते हैं.
0: Far from the village, at the bottom of the ravine, sits a tiny pit. This is where water collects. To understand the reality on the ground, India Today's Ravish Pal Singh took the same route these women travel every day.
1: मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहाँ से ये महिलाएं पानी भरती है, उससे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूँ और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है. और महिलाएं, छोटे बच्चे इसी तरीके से रोजाना यहाँ से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं.
0: What awaits at the bottom is startling. There is no flowing stream, no functioning tap, just water dripping. One drop at a time.
1: बेहद महीन सी एक धार है. ये पानी की धार इतने धीरे धीरे धीरे जमीन के अंदर से निकलती है और वो जाकर के इस पोखर में भरती है. ये जो आप देख रहे हैं पोखर, इसमें ये पानी आकर के भरता है. बताते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है इस पोखर को भरने में.
0: The women know the risks, but they also know they have no choice. The pipeline was laid 2 years ago. The promised water never arrived.
2: हमारे उधर तो पानी नहीं आता है. हम तो सिर पे उठा के ले जाते हैं, किलोमीटर दूर ले जाते हैं.
1: क्या गांव का नाम है?
2: उटावा.
1: उटावा.
2: हाँ, उटावा. और
1: रोज ही आते हो आप लोग?
2: रोज ही आते हैं.
0: The local MLA says the slogan of हर घर नल हर घर जल remains confined to speeches, while villagers continue to risk their lives for drinking water.
3: डबल इंजन की सरकार में जनता को हर घर जल हर घर नल के सपने दिखाए गए. बस जनता की प्यास बुझाने को पानी फरार है. योजना में भारी भ्रष्टाचार की बहार है.
0: द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हाउएवर सेज अ 1.17 करोड़ रुपी जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर टू द ग्राम पंचायत. Officials blame the shortage on falling groundwater levels.
4: तो इस वर्ष गर्मी के कारण जो डगवल विभाग द्वारा किया गया था, उसमें पानी जलस्तर पूरी तरह से समाप्त खत्म हो गया है, परंतु नलकूप में अभी जलस्तर कम हो गया. हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है.
0: On paper, crores have been spent. On the ground, women are still climbing into a 50-foot ravine for water. In Otawa, every drop tells a story. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
5: A continuing series on drinking water crisis in the country, the real stories that matter. I want to leave you though with a happier story. Now, in this season of government exams, most job aspirants dream of clearing just one government exam. But today I want to bring you the story of a young woman who in Chhattisgarh has cracked 19 of them. That's right, 19. From SSC and banking to railways and state recruitments. This is a remarkable success story which could inspire many others. Take a look. Stay well. Good night. Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.
6: For Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
7: SSC CGL hai, CHSL hai, MTS hai. Matlab ye sab pattern to ek hi follow karte hai, bas syllabus kam zyada hoti thi to main sara form dalte gayi. Kisi ka result pehle aata tha, kisi ka result late aata tha.
6: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
7: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. हाँ, हाँ. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
6: She used digital resources extensively during her preparations.
7: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी. इंस्टा पे रील्स डालते थे टीचर्स. हाँ. तो वहां से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसा पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने. हाँ, हाँ. बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
6: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
8: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.

0: These images are not from Otawa village in Madhya Pradesh's Dhar district. The Jal Jeevan Mission pipeline is here. Water is not. In searing 43 degree heat, women are forced to depend on water that seeps slowly through the cracks in the earth.
1: 50 feet niche wo mahilaen aapko dikh jayengi pani ke kanastar liye hui. Wo jo aap dekh rahe hain andaaza laga sakte hain aap ki kitna kathin hota hoga. क्यों? क्योंकि इस तरीके से पानी के छोटे छोटे पोखर यहाँ बने हुए हैं. आप देखिए, ये गहरी खाई है, कोई बरसाती नदी है जिसकी गहराई में ये जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं, इसी में से ये लोग पानी भरते हैं.
0: Far from the village, at the bottom of the ravine, sits a tiny pit. This is where water collects. To understand the reality on the ground, India Today's Ravish Pal Singh took the same route these women travel every day.
1: मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहाँ से ये महिलाएं पानी भरती है, उससे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूँ और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है. और महिलाएं, छोटे बच्चे इसी तरीके से रोजाना यहाँ से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं.
0: What awaits at the bottom is startling. There is no flowing stream, no functioning tap, just water dripping. One drop at a time.
1: बेहद महीन सी एक धार है. ये पानी की धार इतने धीरे धीरे धीरे जमीन के अंदर से निकलती है और वो जाकर के इस पोखर में भरती है. ये जो आप देख रहे हैं पोखर, इसमें ये पानी आकर के भरता है. बताते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है इस पोखर को भरने में.
0: The women know the risks, but they also know they have no choice. The pipeline was laid 2 years ago. The promised water never arrived.
2: हमारा उधर तो पानी नहीं आता है. हम तो सिर पे उठा के ले जाते हैं, किलोमीटर दूर ले जाते हैं.
1: क्या गांव का नाम है?
2: उटावा.
1: उटावा.
2: हाँ, उटावा. और
1: रोज ही आते हो आप लोग?
2: रोज ही आते हैं.
0: The local MLA says the slogan of हर घर नल हर घर जल remains confined to speeches, while villagers continue to risk their lives for drinking water.
3: डबल इंजन की सरकार में जनता को हर घर जल हर घर नल के सपने दिखाए गए. बस जनता की प्यास बुझाने को पानी फरार है, योजना में भारी भ्रष्टाचार की बहार है.
0: द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हाउएवर सेज अ 1.17 करोड़ रुपी जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर टू द ग्राम पंचायत. Officials blame the shortage on falling groundwater levels.
4: इस वर्ष गर्मी के कारण जो डगमुल विभाग द्वारा किया गया था उसमें पानी जल स्तर पूरी तरह से समाप्त खत्म हो गया है, परंतु नलकूप में अभी जल स्तर कम हो गया. हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है.
0: On paper, crores have been spent. On the ground, women are still climbing into a 50-foot ravine for water. In Otawa, every drop tells a story. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
5: A continuing series on drinking water crisis in the country, the real stories that matter. I want to leave you though with a happier story. Now, in this season of government exams, most job aspirants dream of clearing just one government exam. But today I want to bring you the story of a young woman who in Chhattisgarh has cracked 19 of them. That's right, 19. From SSC and banking to railways and state recruitments. This is a remarkable success story which could inspire many others. Take a look. Stay well. Good night. Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.
6: For Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
7: SSC CGL hai, CHSL hai, MTS hai. Matlab ye sab pattern to ek hi follow karte hai, bas syllabus kam zyada hoti thi to main sara form dalte gayi. Kisi ka result pehle aata tha, kisi ka result late aata tha.
6: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
7: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे, तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था।
6: She used digital resources extensively during her preparation.
7: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरा मैनेज करती थी। बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पर मैं टेस्ट देती थी।
6: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
8: Man, whenever I use a sports book during the Soccer World Championship, I feel like I'm getting robbed.
9: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
8: Polymarket?
9: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
8: Even during the World Championship?
9: Especially during the World Championship, whether you're trading on who wins the next match or who lifts the trophy in the final, sports books take around $9 on a $100 position and pay out around $500. Polymarket pays out $650 on that same position.
8: What's the catch?
9: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident, they're giving you $50 free on your first trade.
8: Huh. How do I get started?
10: Download Polymarket now and use promo code WING for $50 free on your first trade. With the World Championship heating up, stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code WING for $50 free on your first trade. Use promo code WING.
11: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.

0: These images are not from Otawa village in Madhya Pradesh's Dhar district. The Jal Jeevan Mission pipeline is here. Water is not. In searing 43 degree heat, women are forced to depend on water that seeps slowly through the cracks in the earth.
1: 50 feet niche wo mahilaen aapko dikh jayengi pani ke kanastar liye hui. Wo jo aap dekh rahe hain andaaza laga sakte hain aap ki kitna kathin hota hoga. क्यों? क्योंकि इस तरीके से पानी के छोटे छोटे पोखर यहाँ बने हुए हैं. आप देखिए, ये गहरी खाई है, कोई बरसाती नदी है जिसकी गहराई में ये जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं, इसी में से ये लोग पानी भरते हैं.
0: Far from the village, at the bottom of the ravine, sits a tiny pit. This is where water collects. To understand the reality on the ground, India Today's Ravish Pal Singh took the same route these women travel every day.
1: मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहाँ से ये महिलाएं पानी भरती है, उससे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूँ और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है. और महिलाएं, छोटे बच्चे इसी तरीके से रोजाना यहाँ से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं.
0: Water waits at the bottom is startling. There is no flowing stream, no functioning tap, just water dripping. One drop at a time.
1: बेहद महीन सी एक धार है. ये पानी की धार इतने धीरे धीरे धीरे जमीन के अंदर से निकलती है और वो जाकर के इस पोखर में भरती है. ये जो आप देख रहे हैं पोखर, इसमें ये पानी आकर के भरता है. बताते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है इस पोखर को भरने में.
0: The women know the risks, but they also know they have no choice. The pipeline was laid 2 years ago. The promised water never arrived.
2: हमारे उधर तो पानी नहीं आता है. हम तो सिर पे उठा के ले जाते हैं, किलोमीटर दूर ले जाते हैं.
1: क्या गांव का नाम है?
2: उटावा.
1: उटावा.
2: हाँ, उटावा. और
1: रोज ही आते हो आप लोग?
2: रोज ही आते हैं.
0: The local MLA says the slogan of हर घर नल हर घर जल remains confined to speeches, while villagers continue to risk their lives for drinking water.
3: डबल इंजन की सरकार में जनता को हर घर जल हर घर नल के सपने दिखाए गए. बस जनता की प्यास बुझाने को पानी फरार है. योजना में भारी भ्रष्टाचार की बहार है.
0: द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हाउएवर सेज अ 1.17 करोड़ रुपी जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर टू द ग्राम पंचायत. Officials blame the shortage on falling groundwater levels.
4: तो इस वर्ष गर्मी के कारण जो डगमुल विभाग द्वारा किया गया था उसमें पानी जलस्तर पूरी तरह से समाप्त खत्म हो गया है, परंतु नलकूप में अभी जलस्तर कम हो गया. हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है.
0: On paper, crores have been spent. On the ground, women are still climbing into a 50-foot ravine for water. In Otawa, every drop tells a story. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
5: A continuing series on drinking water crisis in the country, the real stories that matter. I want to leave you though with a happier story. Now, in this season of government exams, most job aspirants dream of clearing just one government exam. But today I want to bring you the story of a young woman who in Chhattisgarh has cracked 19 of them. That's right, 19. From SSC and banking to railways and state recruitments. This is a remarkable success story which could inspire many others. Take a look. Stay well. Good night. Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.
6: For Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
7: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं. बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था.
6: चारू अचीव दिस फीट without enrolling in any coaching institute.
7: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. हाँ. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
6: शी यूज डिजिटल रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग हर प्रेपरेशन.
7: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, इंस्टा पे रील्स डालते थे टीचर्स. हाँ. तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने. हाँ. बस उस पे मैं टेस्ट देती थी.
6: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.
8: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
9: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
8: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
10: Williams keeps it. First down. Touchdown.
8: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.